तू ठाकर ऊच भगवाना, वड़ा तेरा दरबार, सच्चा तुद तख्त, सिर साहां पातशाहो, निचल चौर छत। वाहिगुरु जी सूही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्ट न धारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। बहती जात कदे दृष्ट न धारत,

0: लोकत ही.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI रेडियो ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी.
3: अर्जन देव महाराज ने उस अकाल पुरख ने जो मजदूर दा रूप धारण किया होया सी ते ओदे वाल तकिया एक दूजे नु देख के इन्ने प्रसन्न होए जिवें सूरज नु देख के कमल दे फुल खिड़दे ने इउं खिड़ गए.
0: बार डीठ मिली जुग मूरत की.
3: लो दोवें जिहड़ियां मूरतां ने एक सरगुण स्वरूप है गुरु स्वरूप है ते हुण जदों दोहां दी एक दूसरे वाल निगाह लगी है भाव एक दूजे नु देखण लगे हन.
0: एक जोत सरबोतम ही उमहाए.
3: जो दोहां विच इक्को ही आ सरगुण ते गुरु स्वरूप दे विच ते एक दूजे दी हुण पछाण कर रहे हन.
0: अवलोकत कीरत को बरनै.
3: लो इह गुरु अर्जन देव महाराज ने जदों परमेश्वर नु पछाण लिया ना फिर ओदी महिमा उचारण करन लग पए.
0: पुनसार समय विच राग सुहाए.
3: लो गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने भी पुनसार अमृत वेला सी ते सुही राग दे विच गुरु महाराज ने उस परमेश्वर दी सिफत सलाह

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

बख्शकतामा चरनी लाल करी तरस रहमाना तल बिगा रहा कई जन्मा दे दर्श।

परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर महापुरुषां दी याद अंदर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमृत बचना दा कीर्तन

जन्म पाए कछ पलो न कीनो ताते अधिक डरो गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजियो पस जो उदर भरो कहो नानक प्रभ बिरद पछानो तब हौ पतत तरो गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजियो पस जो उदर परो कहो नानक प्रभ बिरद पछानो तब हौ पतत तरो परम सम्मान योग चवर शतर तख दे मालक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सोबाए मान गुरु सवारे सत संगी जनो अज दे ए विशेष दीवान जो इस स्थान पर आयोजित किए गए ने शब्द चौंकी जथा जो धन गुरु नानक साहब जी दी अमृत गुरबाणी नू यतन कर रहा है घर घर विच पहुंचाण दा इस जथेबंदी वल्लों अज ग्यारवां एक गुरमत समागम आयोजित किया गया अमृत बचना दा कीर्तन आप जी नू धन गुरु रामदास सचे पिता जी हजूर दे दर घर दे कीर्तनीय गुरसिख भाई साहब भाई बख्शी सिंह जी सरवण करा रहे सन। आओ जो उन्हां ने आसा की वार दी संपूर्णता ते भाई साहब भाई गुरदास जी दी रचना विचों एक पौड़ी दा कीर्तन सरवण कराया ते अक्सर इस पौड़ी दा कीर्तन धन गुरु रामदास जी दे दर ते बैठ के भी भाई साहब कुणी आप जी नूं सरवण करांदे आप सब ने बड़ी भावना नाल इस पौड़ी नूं गायन कीता। आओ धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे शब्द दी रोशनी विच गुरु ग्रंथ साहब जी दे शब्द दी शां थले भाई साहब जी दी इस रचना दी विचार आपां कर सकीए। गुरु ग्रंथ साहब कृपालु कृपा करन आप जितने भी हजूर दी चरण शरण विच इकत्र होए हो यतन करिए अपने अंदर नू संकोचन दा क्योंकि ख्याल फुरने खिन खिन निरंतर साडे मन विचो इन्हां दा प्रवाह चल रहा है। कितना चंगा होवे इन्हां फुरनियां दे प्रवाह विच मेरे सतगुरु जी दे अमृत बचना दी याद वस जाए। आप करो कृपालता विचार प्रारंभ करन तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई गुरदास जी जिन्हां दी रचना नूं गुरु नानक साहब जी दे घर अंदर प्रवान कीता गया है

0: नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी
1: पूरे गुर का सुन उपदेश
0: सार ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमरहु गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस अनित त्याग हो त्रंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहु
0: साथ संग अग्न सागर तरहु
1: हर धन के भर लेहु भंडार
0: नानक गुर पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का एह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल एह रतन
1: सुनत कमाप्त होत उदहार
0: आप त्रैलोकै निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजै
0: सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजै
1: प्रगटे गोपाल महांत कै माथे
0: नानक उदरे तिनकै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभ आप मलाए
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सो प्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेवा
1: आप जंजाल विकार से रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभारी
0: नानक नभी खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्त करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सहोत निधान
1: सब इच्छा ताकि पूर्ण होए
0: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊच पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टेता
1: ए फल तिस जन कै मुख भने
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: केहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
0: समृत शास्त्र वेद बखानी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोविंद भगत कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटे
1: जाके मस्तक कर्म प्रपाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
0: जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवार
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से पै परम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सत्य ऊचता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसाम दि नूर अर सह पुर सह चटी तो दड़ठे सचे पात सह

कर्म धर्म सो संजम करह अंतर लोभ विकार। नानक मन मुख जे कुमावे सो थाए ना पवै दरगह हुए खुआर। सबना रागा विच सो पला पाई

मृग तृष्णा पेख पुलने उठे नगर गंधर्व जिन्ने सच अराध्या नानक मन तन पब पतत उदारन पार ब्रह्म समरथ।

वाहिगुरु जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच ना होवे जे सोची लखवार चुपै चुप ना होवे जे लाए रहा निवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपा लख होहे तां इक न चलै नाल केव सचियारा होइए केव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहे अजाई हुक्मी होवन जी हुक्म लह वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लुक दिख सुख पाई है एक न हुक्मी बखशीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्मे जे बुझे ताहां मैं कहे ना कोय गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने नीसान गावे को

गावै को जप है दिसे दूर, गावै को वेखै हादरा हदूर। कथना कथी न आवै तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। देदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसे वे परवाहो। साचा साहिब साच नाय, पाख्या पाओ अपार। आखे मंगे देहे देहे, दात करे दातार। फिर के अगह रखिए जित दिसे दरबार, मोह के बोलन बोलिए। जित सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच ना वडियाई विचार। करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार, नानक ए वै जानिए सब आपे सचियार। थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन से

0: नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जी आका एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जित सभावा बिन भाणे के नाय करी जेती सिठ उपाही वेखा बिन करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जी आका एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जग चारे यार जा होरद सुनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोय चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर न आवई तावात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत या गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया तर तवल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोहे न सकह काल नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया ईश्वर परमा इंद सुनया मुख सला हनुमंद सुनया जोग जुग तन भेद सुनया शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सत संतोख ज्ञान सुनया अठ सठ का इसनान सुनया पढ़ पढ़ पावे मान सुनया लागे सहज त्याल नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरागणा के गाह सुनया सिख पीर पातशाह सुनया अंधे पावे राहो सुनया हाथ वे असगाहो नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास मने की गत कही न जाए जे को कहे पिछे पछताए कागद कलम न लिखन हार मने का बह कर विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोई मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध मन्ने सगल भवन की शुद्ध मन्ने मोहि चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पासे परगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सिद्धि संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने पावे मुख द्वार
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
0: Panche paave dar gehman, panche soh hai dar rajan, pancha ka gur ek dhyan, je ko kahe kare vichar, karte ke karne nahi sumar. ताल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझे होवे सचियार तबले ऊपर केता पार धरती होर पर होर तिस्ते पार तले कवन जोर जी जात रंगा के नाम सपना लिखिया उड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने को ए लेखा लिखिया केता होए केता तान सवाले रूप केती दात जाने कौन कूत की ता पसाओ एको कवा तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पाख सार असंख मोहन निवलाय तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वडत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े यार कूड़े फेराहे असंख मलेश मल पाख काए असंख निंदक सिर करहे पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख है सुर पार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग खान जिन ए लिखे ते सिर नाहे जे फरमाए देव दे पाहे जेता कीता तेता ना हो बिन नावे ना ही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद पावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार परिये हाथ पैर तन देहे पानी धोते उतर सोखे मूद बलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओ धोए परिये मत पापा कै संग ओ धोपे नावे कै रंग पुन्नी पापी आखन नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आहो जाहो तीर्थ तप दयादत दान जे को पावे तिल का मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मन नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोय विण गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आत्म बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुती माहो कवन जित होवा आकार वेल न पाइया पंडती जे हो वै लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखन लेख कुरान थित वार न जोगी जाने रुत माहो न कोई जा करता सिर ठीक हो साजे आपे जाने सोई किव कर आखा किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखन सब को आके एक दू एक सयाना वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का हुवै नानक जे को आप पाओ जाने अगे गया ना सोहे पाता ला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक बात सहस अठारह कहन कतेबा असलु एक तात लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सालाहे एती सुरत न पाईया नदिया अते वाप अवे समुंद न जानिया है समुंद सा सुल्तान गिरहा से धीमाल तहन कीड़ी तो न होवनी जे तिस मन हो ना विसरह अंत न सिफति कहना अंत न करण देना अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापे क्या मन मंत अंत न जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवे कोए ते सूचे को जाने सोए जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए केते मंगे जोत अपार केते अगणत नहीं विचार केते खप तुटे बेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केतिया दूक पूक सदमार एह पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणे होए होर आख न सके कोए जे को खाए को आखन पाए ओ जाने जीतिया मोए खाए आपे जाने आपे दे आखे से पेके के जिसनु बख्शे सिफत सालाह नानक पातशाही पातशाह अमुल गुण अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवे अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुल ना समाए अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फरमान अमुलो अमुल आख्या न जाए आख आख रहे लिवलाए आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करहे वख्यान आखे बरमह आखे इंद आखे गोपी तह गोविंद आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे केते कीते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नार मुन जन सेव केते आखे आखन पाहे केते कह कह ओठ ओठ जाहे एते कीते होर करे ताय आख न सके केई के जे वड पावे ते वड होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल वेगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार सो दार केहा सो कार केहा जित बै सर्ग समाले वाजे नाद अनेक असंका केते वावन हारे केते राग परिस्यो कहियन केते गावन हारे गावे तुनु पवन पानी बै संतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावे सर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावे इंद उदासन बैठे देवतियां दर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सदी संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाय तेरे 68 तीर्थ नाले गावे जोत महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तुदन गावे जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे कीता अपना जो तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की करे विभूत खिंता काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेश भुगत गयान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाती सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग दुकार चलावे लेखे आवे भाग आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक हुवेश एक हमाई जुग तिव्याई तिन चिल्ले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबान जिव जिस पावे तिवे चलावे जिव होवे फरमान ओ वेखे ओ ना नदर न आवे बहुता इहो विडान आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक हुवेश आसन लोहे लोहे पंडहार जुग छपाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सचे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक हुवेश एक दूजी पाव लख होहे लख होवे लख वीस लख लख गेड़ा आखी अहे एक नाम जगदीश ए तराहे पत पवड़िया।

शर्मखंड की बाणी रूप तिथे कारत घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाए जे को कहे पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत।

आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां शब्द हो तगावो हरि केरा मन जिने वसाया कह नानक आनंद हो वा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब किच है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरविट हो जिस दियां ए वडियाइया कह नानक सुनो संतोष शब्द रो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द घर सुपागे घर सुपागे शब्द वाजे कला जित कर तहारिया पंच दूत दवास कीते काल कंट कमारिया तोर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे कह नानक तह सुख हुआ जित कर अनहद वाजे अनद सुनो वड पा

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ओए जो दिस है अंबर तारे किन ओए चीते।

जो कुछ भी है अगर तेनू कुछ महसूस हो रहा है तो महसूस होना भी करता है, ये भी कृत है उस करते दी। अगर तेनू कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तू कुछ बोल रहे हैं, तू कुछ बना रहे हैं, सब करते दी कृत तो नहीं है, तू स्वयं कृत है। तू कितों करता हो गया, तू ते खुद कृत है। बस जद मनुख खुद कृत ना मन के खुद करता मन लेंदा है तो इस दिते जिम्मेवारियां बड़ी आ जाती है। तो जिम्मेवारियां दे तनाव नार ये दुखी होंदा है, वरना एक करतापन इस तो हट जाए तो खिमा करनी नर्क की ते स्वर्ग की। पाप पुन ते भई कहावत को नरक को स्वर्ग बचावत, स्वर्ग की सुख ते नरक की दुख, की दुख होंदा ते की सुख होंदा कुछ भी नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर वै नहीं जाके कंचन माटी वाने, इत दोवे बराबर न कृत है, करते दी कृत है, दुख सुख करते दी कृत है। मेरी जिम्मेवारी कुछ नहीं, मैं ही नहीं हां तो मेरी जिम्मेवारी की गुस्ताखी माफ हो रहे है, सब कुछ कीता नहीं जा रहा। जब अपन आप उधारे तो शगन अपशगन कहां विचारे, इतनी समझ आ जाए मनुख आज पूर्ण हो गया, इतना बोध पैदा हो जाए आज गल बन जाएगी। पर मैं अर्ज करा अगर मनुख ये सोचे कि मैं अपने दुख नो, मैं अपने विपता नो अपनी सियाणप नाल दूर करांगा। अज तक ते बड़े बड़े साइंटिस्ट विचारक दार्शनिक फिलोसफर मनुख दियां समस्यावां दा हल नहीं लभ सके, कोई भी नहीं हल लभ सके, अज तक ते नहीं लभ सके। इतने दार्शनिक, इतने चिंतक, इतने साइंटिस्ट, इतने आलम फाजल, फिर भी दुनिया दुखी। तो महाराज कहते हैं सियानप काहो काम न आत, जो अनरूप्यो ठाकर मेरे होए रही सो बात। कुछ भी कम नहीं आएगी, जो उसने अनरूप्य है हो रहे, सब कुछ हो रहे, तो भी होया है, सब कुछ हो रहे। पर मैं दुखी कहवा तू अपने आप नो कृत नहीं मनदा, करता मनदा। करतापन शुभ नाल जुड़ गया, करतापन अशुभ नाल जुड़ गया, तो दोहां ने दुख पैदा कीता। बेईमानी ने ते दुख पैदा कीता, गुस्ताखी माफ दान ने भी दुख पैदा कर देता, कुसंगत ने ते दुख पैदा कीता, पता नहीं बर्दाश्त कर सकोगे कि नहीं। सत्संग करके भी सुख कोई नहीं मिले, वही कल्पना वही दुख। कारण मैं ते मौजूद हां अशुभ देच ते शुभ देच, मैं ते मौजूद हां पुन देच पाप देच, मैं ते मौजूद हां चंगे देच ते माड़े देच। बुरा भला कहो किसनो कहिए, जा सगले जी तुम्हारे, की बुरा है की भला है। इस मैनू एक पासे कर ते तेनू पता चल जाएगा, अंधेरे दी भी अपनी कोई दुनिया है, प्रकाश दी भी अपनी दुनिया है, और दोवें ओ ही ने, उसे दी कृत है। नमो अंधकारे नमो तेज तेजे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते इत्थे तक कहिंदे नमो कलह करता नमो शांत रूप है, हे शांति दे करता तेनू नमस्कार, पर हे कलेश दे करता तेनू नमस्कार। करता ते तू ही है, ये बड़ी जुर्रत है धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे। बड़े तो बड़े ब्रह्म ज्ञानी भी संकोच कर गए किधरे, पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने इत्थे संकोच नहीं कीता। नमो कलह करता नमो शांत रूप है, नमस्कार है तेनो ऐ शांति दे स्वरूप करता,
पर नमस्कार है तैनू ऐ कलेश दे करता। बहुत वड्डी गल, करता ही करता है, करता ही करता है, बाकी दे सब कुछ कृत असी हां ही नहीं, तू ही तू है, तू ही नो। इस तरह दे बोध दे आउंदे आ मनुख समाधि लीन हो जांदा। पशु नू भी कोई बोध नहीं कि मैं हां, ए भी मैं अर्ज करदे आ, पशु अचेत है बिल्कुल। इस वास्ते पशुआं दी दुनिया सुख है, कोई पशु बोर नहीं आउंदा, कोई पशु बेचैन नहीं आउंदा, कोई पशु व्याकुल नहीं आउंदा, कोई पशु पागल नहीं आउंदा। हां ओ पशु जरूर पागल हो जांदे ने जिन्हां विचारियां नू पागल मनुखां नाल रहना पैंदा, ओ पागल हो जांदा, उंज नहीं आउंदा। मनुख जिन्हां पशुआं दी प्राकृतिक जिंदगी दे च फर्क पा देंदे ने, उन्हां दी जीवन दी आजादी खो लैंदे ने, क्योंकि मनुख दे कोल ताकत है, ओ पशु पागल हो सकदा, बेचैन हो सकदा, वरना पशु बेचैन नहीं हो सकता। कदी बवर मुताला करके देखो, पंछियां नो शाम नो घर आ रहे हैं, चह चहांदे हुए गीत गांदे हुए। रात दा पहला पैर समाप्त होया, गीत गांदियां गांदियां सौ गए, चह चहांदियां चह चहांदियां सौ गए। अमृत वेला हो गया, रात दा चौथा पैर आरंभ हो गया, चह चहांदियां चह चहांदियां गीत गांदियां गांदियां उठ बैठे ने। चानना हो गया, रोशनी हो गई है, अपने आलणियां नूं त्याग के गीत गांदियां या रिजक दी तलाश दे चल पए। दिन भर रिजक दी तलाश कीती है, सूरज गरूब आउण लगा है, वापस गीत गांदियां या वापस आ रहे ने। गीत गांदियां गांदियां रात दा पहला पैर खत्म होंदे आ, सौ जांदे ने, रात दा चौथा पैर आरंभ होंदे आ, जग पैंदे ने। प्राचीन ऋषि मुनि ते कहंदे सन, जदों पशु सौंदे ने सो जाना चाहिदा, जद पंछी सौंदे ने सो जाना चाहिदा, और जद पंछी जागदे ने जग पैना चाहिदा। यही प्राकृतिक है। मनुख ने अपना सोना भी गैर प्राकृतिक कर दिता है, जागना भी गैर प्राकृतिक कर दिता है, खाना भी गैर प्राकृतिक कर दिता है, और ये सब कुछ क्यों होया है? खुद नो करता मन के, मैं करता, तो एक परमात्मा करता, एक तू करता, तुम दो करते हैं दिच के में बनेगी। परमात्मा ते करता है, ते तेरा करता होना अचेत पने ते खड़ा है, अज्ञानता ते खड़ा है। तू करता नहीं है, तू स्वयं कृत है, तू खुद कृत है। ऐसा की कुछ है जो तू बनाया? अगर हथा नाल बनाया तो हथ कृत ने परमात्मा दी। अगर दिमाग नाल तू सोचे तो दिमाग कृत है परमात्मा दी। इते पूछो उस तों जिसका कदी कोई एक हथ नाकारा हो जाता है, टूट जाता है, कट जाता है, कोई मिलता है बाजार दे, लभदा है, और उस दिन उसनों पता चलता है कि करते दिए कृत एक हथ दी किन्नी कीमत है, किन्नी गल है, किन्नी महानता है। इन्हां हथां नूं मैं कदी कोई महानता ना दिती, उस करते दी इतनी वड्डी कृत मेरे हथ, उस करते दी इतनी वड्डी कृत ए जवान ए दिमाग। जैसे जैसे मनुख बार बार ए ख्याल करदा जाए, तू करता है, तू करता है, तू करता सचार मेडा साई, तू करता है, तू ही करता है, कहिंदे ने मनुख दा अहंकार मिट जांदा है। और जितने मिकदार दे च अहंकार मिटदा जा रहा है, उतने मिकदार दे च निरंकार प्रगट होंदा जा रहा है। और जिस दिन करतापन बिल्कुल खत्म हो जाता है, उस दिन पूर्ण ब्रह्म है, ब्रह्म गया नहीं, उस दिन चानना ही चानना हो गया, उस दिन परमात्मा पूर्ण प्रगट हो गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने एक गोष्ठी लिखी है, बड़ी सुंदर, आपका एक बड़ा कीमती वाक गुरु नानक देव जी महाराज का। उस वाक दे च कहने ने ये करते तू ही है,
लेकिन कुछ कृत मेरी भी है, मैं भी करता। मनुख दी तरफों बोलते ने और पंक्तियां गुरु नानक देव जी दियां ने। इत आम जगत जिस ढंग नाल सोचता है बस उसकी व्याख्या धन गुरु नानक देव जी महाराज कर रहे ने बड़ी सोहनी। साहब कहते ने तू करता है मैं करता। तो फिर प्रश्न होया सब कुछ दा करता ते ओही है, तो फिर दसो मनुख दी कृत की है, की ऐसा जो मनुख दी कृत होवे। महाराज इस तरह बयान करदे ने, दात जोत सब सूरत तेरी, शक्ल सूरत तेरी है, इस दिच मेरा कोई चुनाव नहीं है। जैसे नैन नक्श तो दिते वैसे ने, जैसी आवाज तो दिती वैसी है, जैसे अंगूठे की छाप तो दिती वैसी है, और इस दिच प्राणा दी हरकत ते जोत चेतना सब तेरी। दात जोत सब सूरत तेरी, ए नैन नक्स सब तेरे, क्योंकि तेरी कृत है। ए हाथ पैर मोह मथा सब तेरी कृत है। दात जोत सब सूरत तेरी, जो कुछ भी सूरतां दिखाई दे रही हैं, जो कुछ भी आकार दिखाई दे रहे हैं, और जो कुछ भी मेरी शक्ल सूरत है, सब तेरी कृत है। तो फिर मेरा की रह गया, फिर मनुख दा की रह गया। साहिब कहन है ऐ करते मेरा भी कुछ करतापन है, तो फिर की है। दात जोत सब सूरत तेरी, बहुत सियाणप आओ में मेरी, ए अहंकार मेरा है। भावे सब कुछ तेरा है पर इहदे उत्ते मोर मैं ला दित्ती है, मेरा मेरा मेरा मेरा तन मेरा धन मेरा दिमाग मेरी इज्जत मेरी मान मर्यादा मेरी शक्ति मेरी कुल मेरी प्रभुता। तो महाराज कहने ते मेरी है, अहंकार मेरा है, बाकी कुछ भी मेरा नहीं। ए अहंकार दा कृत करता मैं हा, ए मैं है मेरी कृत है, ए अहंकार मेरा है तेरा नहीं है। तू तो इतना कुछ बढ़ा के भी चुप है, खामोश है। तू तो किधरे भी नहीं कहता है सागर मैं बनाया, ये सूरज मैं बनाया, ये धरती मैं बनाई, तू तो किधरे भी नहीं कहता। एक गल वखरी है कि खुदा नो भी बुलाया है। एक थां थे डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने, उसने भी खुदा ते मनुख दी गोष्ठी लिख दिती। गुरु नानक दे कहण दा अपना आलमाना ढंग, वो शायर है उस दे कहण दा अपना ढंग। साहिब कहंदे ने दात जोत सब सूरत तेरी, तमाम शकल सूरत और मेरी शकल सूरत सब तेरी, ए नैन नक्श तेरे, ए प्राणा दी हरकत तेरी, ए आत्मा तेरी, पर बहुत सियाणप आ मैं मेरी, चतराई ते अहंकार मेरा तेरा नहीं। पंडित दयाराम होए ने गुजरात दे, गुजराती संत होए ने, गुजराती भगत काठियावाड़ दे इलाके च। एक कहंदे ने हे प्रभु तेरे कदमां दे च कुछ अर्पण करन नूं जी करदा है, अर्पण मैं ओ करना चाहना जो मेरा होवे, कि तेरी चीज तेरे अगो रख दिया। जैसे रविदास कहने तेरा दिया तुझे क्या अर्पण, नाम तेरा तो ही चवर डोला रे, तू दिता ते तेरे अगो रखा कोई शोभा नहीं देंदा, क्यों गल फबदी नहीं। तो दया राम कहने मैं ओ तेरे कदमां दे च रखना चाहना जो मेरा होवे, कि तू मैनू दिता ते मैं तेरे अगो रख दिया, इते कुछ भी नहीं। मैं वो रखना चाहना जो मेरा है, पर मेरी एक बेनती है तू कबूल कर, परवान कर, क्योंकि मेरा है
पता नहीं तू कबूल करेगा कि नहीं करेगा। उन्हें भी अपने ढंग नाल गुजराती भाषा दे गोष्ठी लिखी है। तो प्रभु बोले अच्छा ठीक है, की है तेरा बैठ कर, की है तेरा। ये भगत के कहंदा है मेरा बस यही है, ये बैठ करना चाहना मेरा। ये जो अहंकार है, ये जो मैं है, ये जो मेरा है, बस ये भाव बैठ करना चाहना ताकि तू पूर्ण तौर पर प्रकट हो, ताकि मैं तेरी झलक देख सका। बस मैं खुद ही दीवार हूं और कुछ नहीं, मैं ही दीवार बने आया और ये दीवार मेरे को गिरदी नहीं। तू कबूल करें तो मैं यही रख दिया तेरे को। समुचे जगत विच अहंकार का ही संघर्ष है। राजनीतिक दुनिया विच अहंकार, धार्मिक दुनिया विच अहंकार, समाजिक दुनिया विच अहंकार, इस वास्ते परिवार दे संघर्ष, धार्मिक दुनिया संघर्ष, राजनीति दे संघर्ष, अहंकार। मैं मैं मैं हम बड कव कुलीन, हम पंडित हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कवे ना नासी। रविदास कहंदे ने मैं कवि तो कविता दा करता बन गया, कोई जात दा करता बन गया, कोई कुल दा करता बन गया, कोई ज्ञान दा करता बन गया, कोई सन्यासी सन्यास दा करता बन गया। हम बड कव कुलीन, हम पंडित हम जोगी सन्यासी, कोई योग दा करता बन गया, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कवे ना नासी। कोई दान दा करता बन गया, ते जिस दित्ते हुए दे नाल करतापन जुड़िया होया ओनू दान मनिया ही नहीं गया। वो ते मनुख दे हत्थां च ही है, क्योंकि करतापन ते नाल जुड़ गया, ओदा अहंकार ते नाल जुड़िया है। तीर्थ वर्त अरदान कर मन में धरे गुमान, नानक ने फल जात तै ज्यों कुन चरे इस नाम। धर्म दी साधना दी सफलता किस तरह मनांगे, जितना मैं मिटदा जाएगा समझ लो सफलता मिलती जा रही है। और जिस दिन टोटल मैं मिट जांदा है तो प्रगट हो जांदा, तो करता तो भया, मुझ में रहा ना हो। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तद तो चारों पासे कबीर दी महिमा बड़ी हुई, उपमा बड़ी हुई। इस दे ज्ञान दी, इस दे व्यवहार दी, इस दी जीवन शैली दी, ते कुछ एक ने मूंह दे उते उपमा की थी। कबीर दान है तो अब दी ज्ञातली अर्ज करा, उपमा करना मनुख दी एक मजबूरी है, निंदा करना मनुख दी एक मजबूरी है। उपमा ए उस दी करदा है जो इसका भविष्य होवे, जो ये होना चाहता है, जो ये बनना चाहता है, वरना उपमा कर नहीं सकता। कोई किसी फिल्म स्टार दी उपमा पिया करदा है, कोई राजनीतिक दी उपमा पिया करदा है, कोई किसी संत महापुरुष दी उपमा पिया करदा है, मनुख ओही कुछ होना चाहता है, वरना उपमा दा कोई मतलब ही नहीं सी। मनुख निंदा कर रहा है, अपने ही माजी दी निंदा कर रहा है, पशु सी पशुआ वाली कृत किधरे प्रगट हो रही है, निंदा पिया करदा है। दरअसल अपने पिछोकड़ नूं ही बंडदा पिया, होर कुछ नहीं। अगर इस तरह देखो या इंज कर लो, ए निंदा कर रहे है अपने माजी दी, ए उपमा कर रहे है अपने मुस्तकबिल दी, ए निंदा कर रहे है अपने अतीत दी, ए उपमा कर रहे है अपने भविष्य दी। लाजमी है, ये हकीकत है, एक बहुत सच्चाई है, वरना मनुख उपमा कर ही नहीं सकता। उपमा लाजमी अगे मनुख दी मंजिल है। मनुख वैसा होना चाहता है, उस वर्गा होना चाहता है, ताही ते जो है उपमा कर रहा है, वरना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कहते जिस दिन मनुख नु मंजिल लग पई, दो चीजा मिट जांदी, निंदा ते उस तो मिट जांदी, खत्म हो गया अतीत, खत्म हो गया भविष्य, मंजिल ही मिल गई, टिकाने ही मिल गया। उस्तत निंदा तो सन रहत हो जांदा, उस्तत निंदा दोग दे आगे खोजे पद निर्वाणा,
पर जन नानक एव खेल कठन है किन्हो गुरुमुख जाना। अगर कोई निंदा कर रहे है इतनी गल समझ लेना, अपने पिछोकड़ दी निंदा कर रहे है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर कोई मनुख उपमा कर रहे है तो अपने भविष्य दी निंदा कर रहे है, ये कुछ होना चाहता है, वरना यह हो नहीं सकता कि राजनीतिक दी उपमा करे राजनीतिक होना चाहता है, एक बादशाह दी उपमा करे ये बादशाह होना चाहता है, एक फिल्म एक्टर दी उपमा करे ये एक्टर होना चाहता है। मैं ते भारत देश देख के हैरान होना है, एक फिल्म एक्टर किधरे आ जाता है लखां दी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मनो कोई कुछ होना चाहता है, उसी दी परिक्रमा करेगा, उसी दे आले दुआले घूमेगा और की है। मनुख अपने भविष्य दी परिक्रमा करता है, मनुख अपने अतीत दी निंदा करता है, जो पिछे पशु जगत दे च एक कर चुके है वो जद किधरे किधरे भी इसनो दिखाई देंदा है तो बंडदा है, निंदा करता है। निंदा मनुख अपने अतीत दी करता है, उपमा मनुख अपने भविष्य दी करता है, जो कुछ ए होना चाहता है। और परमात्मा होए बिना इसनो चैन मिलन भी नहीं लगी, ए भी मैरिज कर दे। और जिस दिन परमात्मा हो जाता है, करता ही प्रगट हो जाता है, कृत सारी मर जाती है, वो ऐलानिया कह देता है ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर क्या जानो किच हर किया, भयो कबीर कबीर। ना मैं कर सकता, ना मेरे कुल समर्था है, ना ये शरीर मेरा, पता नहीं रब ने के कीता है, कीता रब ने, दुनिया कही जा रही है धन कबीर धन कबीर धन कबीर। यो पुरुष है जिसका अपना करतापन मिट गया है ते पूर्ण करता प्रगट हो गया, ये वो कह सकता है। रहीम अपने जमाने का एक बहुत वड्डा दानी सी, लेकिन देन लगया अक्सर इस दी अखा नीविया रेंदिया सन, और चलदे होया भी अक्सर नीवी अख नाल चलदा सी। दो चार सियाणिया ने किधरे कह दिता, ते सियाणे अक्सर हंकारी होंदे ने, क्योंकि सियाणप दा हंकार होंदा ही है, भई हद हो गई तू देन वाला है, जब तेरा हाथ उच्चा है तो तेरा सिर उच्चा होना चाहिए, तू सिर नीवा क्यों करदा, अपनी अखियां नीवियां क्यों करदा, नैन नीचे क्यों करना है, तेरा हाथ उच्चा रहिंदा है, तू दानी है हर एक नु देना है, तो तेरा सिर भी उच्चा होना चाहिए। तो पता है रहीम की कहिंदा है, साई सबको देत है पोखत है दिन रैन, लोग नाम मेरो कहें या ते नीचे नैन। दाता परिपूर्ण परमात्मा है, अज्ञानी लोग रहीम नू दानी कह देंदे ने, शर्म दा वारा मेरा सिर झुक जांदा की कर, लोकी कहंदे ने शर्म दा मारा मैं सोचदा धरती पटे ते समावा, दाता ते तू, मैं ते कृत हां, मैं ते निमित हां, करता ते तू है, सब कुछ दा करता। इकबाल ने जिस ढंग नाल गोष्ठी लिखी है, मैं थोड़ा जिहा होर स्पष्ट करने दी थोड़े सामने कोशिश करा, चूंकि मूल मंत्र दा ए अखर करता अपने विच इतना कुछ छुपाई बैठा है, हो सकता है अगर वो न्याय शास्त्र दा करता जिस ढंग नाल लिख गया है और उसे ढंग नाल सुनाया जाए विचारिया जाए, बहुत सारे लोग गुस्ताखी माफ समझ दे तल तो जो थले जी रहे ने नास्तिक हो जाणगे, न्याय शास्त्र नु पढ़ के बथेरे नास्तिक हो गए। क्योंकि उसने अपने होन बिल्कुल एक पासे कर ले, कुछ भी नहीं, ईश्वर तो बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, पाप भी होई पुण्य भी होई, बुरा भी होई भला भी होई, रात भी होई दिन भी होई, जन्म भी होई मृत्यु भी होई, इतनी व्याख्या करदा गया, इतनी व्याख्या करदा गया, आखिर मनुखां दी समझ तो परे हो गई गल। जैसे धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते सहस तो नैन नैन है तो एको,
सहस मूरत नाना एक तोई, तेरी कोई मूर्ति नहीं है।

0: चकर चैन अर वरन जात अर पात नहन जे कोई तेरा चकर चैन नहीं, कोई तेरी मुहूर्त नहीं। सहस मुहूर्त नना एक तोई, पर सारिया मूर्तियां तेरिया ने। गुरु नानक देव जी कह, तेरी कोई मूर्ति नहीं, सारिया मूर्तियां तेरिया। सहस तो नैन नना नैन है तोय को, सहस मुहूर्त नना एक तोई। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिंद, सहस तो गंध इओ चलत मोई। तेरे कोई पैर नहीं, पर सारे पैर तेरे ने। तेरी कोई नक नहीं, गंध गंध सुगंध मानन वाली नासका। तेरी कोई नक नहीं, इस सारियां नासका तेरिया ने और किसती। तेरी कोई जबान नहीं, सब जबाना तेरिया। तेरा कोई रूप नहीं, सारे रूप तेरे ने। तेरी कोई अख नहीं, सारिया अखां तेरिया ने। तेरे कोई पैर नहीं, सारे पैर तेरे ने। तेरे कोई हथ नहीं, सारे ही हथ तेरे। रिते पहली हो गई, किस तरह पकड़ोगे गुरु नानक दी इस गल नो। निर्गुण रूप दे कोई तेरी अख नहीं, पर सारिया अखां तेरिया ने। तू करता है और ये कृत है, और तू अपनी कृत दिच बैठा हुआ है। अपनी कृत तो वक नहीं है, करता पुरख। पुरख कहते पूरे होया व्यापक। अपनी कृत दे विच तू बैठा है, कृत तो अलग नहीं। जे अखां तेरिया कृत ने तो अख दिच तो ही है। नक तेरी कृत है तो नक दिच तो ही है। हथ तेरी कृत है तो हथां दिच तो ही है। पैर तेरी कृत है तो पैरां दिच तो ही है। दिन तेरी कृत है तो दिन दिच तो ही है। रात तेरी कृत है तो रात दिच तो ही है। सूरज तेरी कृत है तो सूरज दिच तो ही है। इसनों इस तरह लेना। सहस तो नैन नना नैन है तोय को, सहस मुरत नना एक तोई। तेरी कोई अख नहीं, सारिया अखां तेरिया ने। तेरी कोई मूर्त नहीं, सारिया मूर्तां जो है तेरिया ने। इधर सब व्यापक है, सब सिलसिला जो है तेरा है। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, इकबाल ने जिस ढंग नाल गोष्ठी लिखी है बयान करा। खुदा ने मनुख नो आख्या, जहां राज यक आबो गिल आफरीदम, तो ईरान ता तार जंग आफरीदी। इस तरह के जेडे शायर कवि आंदे ना, जिमें कदी आसमान ते बिजली चमकदी है एवं एक क्षण वास्ते, एक सैकंड वास्ते। कदी कदी इस तरह के शायर, इस तरह के कवि किसी वक्त एक लम्हे वास्ते, एक सैकंड वास्ते पूरे ब्रह्म ज्ञानी आंदे ने। उस विच जदों इन्हां नूं ये झलक मिलती है, अगे पिछे नहीं आंदे। संत हो जो हर वक्त संत है, मिलिया होए ना विछड़े, जे मिलिया होई मिल गया विछड़दा नहीं। बूंद सागर विच मिल गई। इस तरह के शायर, इस तरह के कवि इतने गहरे, कदी कदी इन्हां नूं एक झलक मिलती है, इस तरह जिवें अंधेरे च कोई बिजली चमकी है, ते थोड़ा जिहा चानना हो गया, लिशकारा हो गया। इस वास्ते उस समय इन्हां दे आखे हुए जिहड़े बोल आउंदे ने, ब्रह्म ज्ञानियां नाल मेल खा जांदे ने, महापुरशां नाल मेल खा जांदे ने। जैसे इकबाल कहिंदा है, दरम्यान कारे दरिया तख्ता बदम करदा अमी, बास में गोयन के दामन तरमकुन होशियार बास। ए प्रभु, तख्ते नाल तू मैनू पक्का बन के दरिया दे सुट दिता है, ते हुण तू मैनू ए कह रहे हैं भिजी भी ना, ते किनारे ते लग जा। हुण किनारे ते लगना मेरी मर्जी है, ते भेजा ना हुण मेरी मर्जी है, तू ते बन के रख दिता मैनू। दरम्यान कारे दरिया तख्ता बदम करदा मी, बाज मी गोयन के तामन तरम कुन होशियार बास। सब कुछ हो रहा है, मैं कर नहीं रहा। इकबाल, सब कुछ हो रहा है, मैं तेरी कृत ते कृत देश तो बैठा है, हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, मैं हां ही नहीं। बास में गोयन के दामन तरम कुन होशियार बास, सूफी संतां ने भी इस मामले च बहुत कुछ किया। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा। इकबाल कहंदे ने जहां राज यक आबो गिल आफरी दम तू ईरान ता तार जंग आफरी दी। ए मनुख देख मैं जमीन बनाई, दरिया बनाए, पहाड़ बनाए, ते जिथे जिथे तक तेरी पहुंच हुई तू वंड के रख दिता। किधरे अफगानिस्तान बना दिता, ईरान बना दिता, तातार बना दिता, टर्की तुर्की बना दिता। इन्हां मुल्कां दे उसने नाम लिखे ने अपने रदीफ काफी दी चाल दे कविता दे। ए तो की कीता, जमीन तू इस तरह वंडी क्यों, तू टुकड़े टुकड़े क्यों कीती। जहां राज यक आबो गिल आफरी तम तू ईरान तातार जंग आफरी थी। मन राज यक फौलाद नाब आफरी तम तू शमशीर तीरो तुफंग आफरी थी। मैं लोहा बनाया, तू बदूका बना लिया, तीर बना ले, तोपा बना लिया। ए तू की कीता, मैं लोहा इस वास्ते ते नहीं बनाया सी। ए तू की कीता, मैं ते तेरी वरतों वास्ते बनाया सी, कोई कारामद चीज जिस नाल कुछ तामीर होवे। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, जद कोई मनुख तामीर कर रहा होवे और उस तामीर दे च लीन होवे, जितना लीन होवे उसका हंकार नहीं होवेगा, उस वक्त रब दे नेड़े आंदा। एक कवि जद कविता दे च लीन होके कविता लिख रहा होंदा, रब दे नेड़े आंदा। एक मुसव्वर जद लीन होके तस्वीर बना रहे आंदा, रब दे नेड़े आंदा। एक समदराश जद लीन होके बुद्ध गढ़ रहे आंदा, रब दे नेड़े आंदा। और जद जिस वक्त कुछ मनुख मिटा रहे आंदा, रब तो दूर आंदा। ए भी मर्स करदे आ, बनाण लगे नेड़े आंदा। मैनू ते गल भुलदी नहीं, इंदौर दे नेड़े एक मंदिर है, उहनू स्वर्ग मंदिर कहिंदे ने। ते उत्थे कोई गालबन 22 साल तो एक मूर्ति बना रहा सी संगत राज सुन ते। वो बन गई है, दूजे मुसव्वर ने बनाई है, दूजे संगत राज ने, वह बेचारा गुजर गया। ते मंदिर दे मुंतजिम उसनू जयपुर तो लिया है और उसनू कहन लगे घट तो घट 2 साल दे चे मूर्ति बना दें, 20 फुट वड्डी मूर्ति, 20 फुट महात्मा बुद्ध थे। लेकिन वो 22 साल भी कंप्लीट ना कर सके। मुंह मथा गढ़ दिता, हाथ भी महात्मा बुद्ध दे बना दिते, गोड़िया तक बनतर बना दिते, सिर्फ चरण रह गए पैर। और 3-4 साल तो बस सवेरे हथौड़ा छेनी लेके बैठ जांदा सी सोची, ते शाम नू उसे तरह हथौड़े ते छेने नू रख के अपना विश्राम दे चला जांदा सी। मंदिर दे मुंतजिमा ने सोचे या ते पागल है या ते मुफ्त दी दिहाड़ी साडे को लेना चाहता। दिहाड़ी ते सी, मुफ्त दे पैसे इस नू देई, करदा कुछ भी नहीं। एक दिन किधरे सख्ती नाल मुंतजिम पेश आए मंदिर दे, बे असी तेनू रुखसत करन लगे हां, होर संगतराश बुलावांगे जो इन्हां चरणां नू गढ़ लवे, पर असी अफसोस नाल पुछना चाहने हैं, इतना सोना तो मुजस्मा बना दिता है, मूर्ति बना दिती है, ते 3-4 साल तो बैठा है, थोड़ा जिहा कम है ये तेरे कोल नहीं हो रहा, जदके तू पहले पहल 2 साल दे च बनाने दा वायदा कीता सी। उहदी अखां भर आईआं, कहिंदा जद मैं हथौड़ा चुकदा छैणा चुकदा सोची पैंदा महात्मा बुद्ध दे चरण गड़ा, ते जिन्हां चरणां दे उत्ते हजारां मनुखां ने रोज मत्था टेकना है, वह चरण मेरी पकड़ दे च नहीं आउंदे, मेरी गिरफ्त दे च नहीं आउंदे, मेरी कल्पना दे च नहीं आउंदे, मैं खो जाना, मैं मिट जाना। उन्हें रोंद गल खत्म ते हो गया, मर गया, दूजे संगत राश बुलाए गए, पैर नहीं बना सके, उस तो बने ही नहीं। और तमाम मंदिर दे मुंतजिम मनते सन, बना लगे लीन हो जाता, खो जांदा सी, किसी गैबी दुनिया च खो जांदा सी। ओदी चेहरे नूं वेख के, ओदी लीनता नूं वेख के इंज प्रतीत आउंदा सी जिवें कोई समाधी लीन योगी है। बनाउण लग्गिआ मनुख रब दे नेड़े आउंदा, बहुत नेड़े चला जांदा है। अगर ओह लीन हो गया ते करतापन उसदा खो गया, ओह ते रब दे नेड़े हो गया। तो कोई चित्रकारी दे राही नेड़े हो जांदा है, कोई गीत संगीत दे राही नेड़े हो जांदा है, कोई किसे अलाप राग दे राही नेड़े हो जांदा है, कोई उसकी धुन ते उहदे सिमरन दे राही नेड़े हो जांदा है। जद जैसे जैसे उसका अपनापन मिटदा है ते लीन आउंदा है। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, खुदा ने मनुख नूं आखिया ई तों की कीता, तू तोप बना ली, बंदूक बना ली, खत्म कर ली, मिटाण ली। चमन आफरीदी निहाले, चमन रा कफस साखती, तायर नगमा जनरा। तू तबर बनाया, मैं चमन बनाए, सोने दरख्त फलदार, पर तू कटण लई कुलाड़े बना ले। तबर आफरीदी निहाले चमन रा कफस साखती, तायर नगमा जनरा। जो इतने सोने सोने राग अलाप देने पंछी, तो उन्हां लई पिंजरे बना दिते। मैं चमन बनाए, तू कुलाड़ा बनाया, मैं लोहा बनाया, तू तोप बना ली, बंदूक बना ली, मैं जमीन बनाई ते तू ईरान बना लिया, अफगानिस्तान बना लिया, ते तुर्की बना लिया। ये तू की कीता? कहिंदे ने बंदा खुदा दे सामने होया बकौले एक बात, ते बंदा कह लगा ठीक है तू करता है, ते आपां भी ते करते ही हां ना। जे तू करते पन दा इतना दावा करना है, तो फिर साडा करता पन भी देख, असी भी करते हैं। तू किस चीज दा करता है? कृत मेरी सी, उसे ही कृत नो तू बिगाड़दा रहा, उना हथां दे नाल जो हथ भी मेरी कृत, उसे दिमाग दे नाल जो दिमाग भी मेरी कृत। ते पता है मनुख सामने होके की कहिंदा है? तू शब आफरीदी चराग आफरीदम, देख मैं करता, तू अंधेरी रात बनाई ते मैं जलदा होया दीवा बनाया, तेरा हनेरा रहने ही नहीं दिता, मैं रात नूं दिन दे च बदल के रख दिता। तो ते रात बनाई सी ना, मैं रात रहन नहीं दिती, मैं अपने घर दे च तेरी रात दा हनेरा नहीं रहन दिता। तू शब आफरीदी चराग आफरीदम, सफाल आफरीदी अयाग आफरीदम। तू मिट्टी बनाई सी, मैं प्याले बनाए, सुराइयां बनाईया, सोने सोने बर्तन बनाए। कोई तू आसमान तो सुटे ने, मैं बनाए ने, मेरा करता पन। अगा चल के इकबाल इंज लिखते ने, बयाबानो गुलजार बागा फरीदम, खयाबानो कोसार रागा फरीदम। तू उच्चे नीवे पहाड़ बनाए, मैं उना दे खयाबान रस्ते बनाए। तू थोड़ी बनाए ने सड़क, मैं बनाईया। तू बयाबान जंगल बनाए, बंजर बनाईया जमीना, मैं ले लहांदे चमन बनाए, गुलिस्तां बनाए। तू थोड़ी बनाए ने, मन आनम के अजसन आईना साजम, मन आनम के अज जहरे नौशीना ए साजम। ये मेरी ही हस्ती है जिन्हें पत्थर नो पिघला के आईना बनाया है, शीशा बनाया। तू ते पत्थर ही बनाए सन, मैं शीशा बनाया। तू मेरे विच एक कमी रहन दिती कि मेरिया अखा सब कुछ देख सकदियां ने, अपना मुंह नहीं देख सकदियां। तो मैं पत्थर नो पिघलाया, शीशा बनाया, शीशे च अपना मुंह वेख्या, तेरी कमजोरी रहने नहीं दिती। मन आनम के अज संग आई ना साजम, मन आनम के अज जहरे नौशीना ए साजम। तू जहर बनाई सी, संखिया बनाया सी, मैं उसनो मार के कुश्ता बनाया है, अमृत बना दिता है। इत मैं करता, इना चीजा दा मैं करता, जे तू करता है तो मैं भी करता। एक बार ने लंबी चौड़ी वार्ता लिखे, मुख्तसर मैं अर्ज करा, खुदा बोलिया जे मैं रात ना बनांदा ते तू दीवा कित्थों बनांदा? ਜੇ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਪਿਆਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਰਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚਮਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। 4 ਪਾਉਂਡ ਇੰਡੀਕਨ ਸਾਬਤ ਲਾਲ ਮਸਰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਲਵੋ 2.99 ਦਾ ਬੈਗ। ਬੀਸੀ ਰੈਡ ਓਰੇਂਜ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲਵੋ 88 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਯੂ ਹੈਪੀ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ।

अभंग संगे अभंगन विभूते परमात्मा, गुरु मेरे संग सदा है नाले व्यापक। बड़े ध्यान नाल सुनना, जो व्यापक नहीं वो गुरु नहीं, जो व्यापक नहीं वो परमात्मा नहीं। प्रकाश दे रूप दे, सता दे रूप दे, शक्ति दे रूप दे परमात्मा व्यापक है। शब्द दे रूप दे परमात्मा व्यापक है। शब्द नूं दर क्यों कहा है? ये सारा संसार शब्द तो आया है। दरवाजा दो काम करता है, तुसी दरवाजे दे राही अंदर दाखिल हो जाओ, ऐसे ही दरवाजे दे राही बाहर जाओगे। दरवाजे दे च बंदा बैठदा नहीं, सौंदा नहीं, दरवाजा आन जान नहीं होता। शब्द दे राही संसार दी उत्पत्ति आउंदी है, शब्द दे राही परले हो जाती है। पंक्तियां सुनो, उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। शब्द तो उत्पत्ति आउंदी है, शब्द तो परले हो जाती है, फिर शब्द तो उत्पत्ति आउंदी है। हुण मैं दोहरावां, समा है नहीं सही, इस वास्ते अंदाजन आख्या जा सकता है करोड़ा अरबा साल तक, भावे साल नहीं सन, समा नहीं सी, इंज अंदाजन कही है, करोड़ा साल तक धुंधी धुंध सी, धुंधी धुंध, अंधेरा ही अंधेरा सी धुंध करके। एक दिन जोर दा धमाका होया, आवाज हुई, शब्द होया, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरिया। उस कवाओ तो, उस आवाज तो लखा जिंदगी दे दरिया चल पे, लखा ही जिंदगी दे दरिया। एक मिनट इस नो मैं दोहरावा, वो आवाज की सी, ओनू कलगीधर पातशाह कहते ने, वो आवाज ओहंकार सी, ओहंकार आद कथनी अनाद, ये अनादि कथनी है, ये ब्रह्मंड दी पहली आवाज है, ये पहले तो पहला शब्द है कि ओहंकार। कबीर भी ऐसा कहते हैं बावन अखरी दे, ओहंकार आद में जाना, लिखे अर मेठे ताए न माना, ओहंकार इतना नहीं तुसी लिख दो ते मिटा दो। कबीर कहंदे ना ओहंकार आदि शब्द है और उस तो जगत आया है। मां बाप तो शरीर आया है, तो शरीर विच मां बाप दी अंश मौजूद है। शब्द तो संसार आया है, तो शब्द संसार विच मौजूद है, साडे अंदर भी मौजूद है। सब कुछ आया जो शब्द तो है, व्यापक है शब्द। भुगत ज्ञान दया भंडारन घट घट वाजे नाद, ओ नाद घट घट दे च वज रहे, ओनू अनाहत नाद कहते ने। दो तरह का नाद होंदा है, दो तरह की आवाज होंदी, आहत अनाहत। आहत कहते ने चोट नू, संस्कृत दे चोट नू कहते, इन्हें मैनू आहत पहुंचाई है, इन्हें मैनू चोट पहुंचाई है। आहत शब्द जो दो चीजा के टकराव तो पैदा होंदा, जिवें दो हथा नाल ही ताली वजदी है एक नाल नहीं। आवाज जो साडे कन सुनदे ने, ए आहत शब्द दे टकराव तो पैदा हुंदा है। ए हवा दोगे ते हारमोनियम बजेगा उंज नहीं, पवन दे टकराव तो। हाथ थाप दोगे ते तबला बजेगा उंज नहीं, लोहे नाल लोहा टकराए, पत्थर नाल पत्थर टकराए, पित्तल नाल पित्तल टकराए, पित्तल सोने नाल टकराए, सोना चांदी नाल टकराए। टकराव तो जिहड़ी आवाज पैदा हुंदी है उहनू कहिंदे ने आहत शब्द। पवन दरख्तां नाल टकराए, पानी पत्थरां नाल टकराए, उस टकराव तो जिहड़ी धुन पैदा होंदी है, आवाज पैदा होंदी है, उहनू कहिंदे ने आहत शब्द। अनाहत शब्द जो टकराव तो नहीं, सीधा प्रकाश तो आया है, परमात्मा तो आया है। अनाहत नाद परमात्मा दी आवाज है। परमात्मा दिखाई बाद विच देंदा है, सुनाई पहले देंदा है। इस वास्ते कहिंदे ने सुतवा धर्मंग विजानाति, परमात्मा दी यात्रा भी
सुन के ही शुरू होवेगी।

میں ایک دفعہ جیند دے چھ گو لے بیٹھا خرید بیٹھا بڑی خوبصورت سی چنگی لگی مینو ہر سال میں اتھے دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دے جوتی جوت سمان پرب تے جانا ہونا महापुरखां दा डेर है वह मनांदे ने संत जीवन शाह सिंह जी दा डेर ओ मेरे कोल पुछण लगे सुनया तुसी गऊ खरीदी है मैं क्या जींद ते रोहतक ए गऊआं करके मशहूर है अच्छियां अच्छियां गऊआं मैं क्या मैनू बड़ी चंगी लगी है मैं ले ले ओ आ गए कहण लगे मैनू दिखाओ मैं क्या देखो जींद शहर दे बड़िया सरावां ने जो गऊआं नाल भरिया रहिंदियां ने मैं चल के दिखाई उन्होंने अपना हाथ सिर ते दे मारिया कहने लगे ज्ञानी जी इनू लेके जा रहे हो मैं क्यों ये ठीक लक्षण नहीं ने औखे होवोगे दुखी होवोगे ये सिर्फ दिसण नू खूबसूरत है बाकी ये कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है थानू लक्षणा का पता नहीं सानू पता है जे तुसी गौ लेनी है ते असी थानू लेके देंगे वो जिस वपारी को मैं लई जाके संता ने उन्हों डांटिया भी मस्कीन और इन्हू गौ तक डंगदी देनी सी ये की कीता है तू वो हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज जी की करी इन्होंने आप ही पसंद की है इन्होंने आप ही पसंद की थी है वो कहने लगे इन्हों लक्षणा का पता नहीं है वाकई मैनू गऊ दे लक्षणा का पता नहीं कुछ लक्षण ऐसे ने दिस पैंदा इराकी घोड़ा है वधिया घोड़ा है ये वधिया गऊ है लक्षण ही दस दें देने ये जमीन वधिया है धरती वधिया है ऐसे खोजी मौजूद ने अज ते विज्ञानक ढंग नाल खोज करते ने ये धरती बड़ी उपजाऊ है बहुत वधिया है लेकिन पुराने जमाने दे सूईए लक्षण देखते दे सन तो मैं अर्ज करा मनुख धार्मिक है धार्मिक मनुख दे कुछ लक्षण होंगे ये भी मैं अर्ज करते उन्हां लक्षणा तो पता चलता है धार्मिक है मनुख संत है भगत है लक्षणा तो पता चल रहा है संत है भगत है ये लक्षण ते मैं बाद दे बयान करांगा पहले गुरु अर्जन देव जी महाराज का यह पावन पवित्र शब्द वो कहिंदे ने मैं धर्म दे मार्ग ते चलिया ते हां अपने उत्ते लेंदे ने मैं उस बच्चे दी तरह चलिया जिसने अज चलना सिखिया ते जिस बच्चे ने अज ही चलना सिखिया वो कितना क चलेगा एक कदम दो कदम गिरेगा गिरेगा लाजमी गिरेगा बच्चा लंबा पेंडा तय नहीं कर सकता जैसे शरीरक तौर ते मनुख बच्चा होवे ते ओ बच्चा जिसने अज चलना सिखिया कितना क चलेगा एक कदम दो कदम गिरेगा गिरेगा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का शब्द बड़े ध्यान नाल सुनना भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गह लेहो अंगुरिया सरवन ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटुत पिंगुरिया हे प्रभु हे गुरु तू मेरी बांह पकड़ मेरी उंगल पकड़ मैं नहीं चल सकता मैं ते गिरदा वाकर दी लोड़ पैंदी छोटे मासूम बच्चे नू चलन वास्ते मां बाप दी उंगल पकड़ के चलना सिखदा है सतगुरु कहिंदे ने हे प्रभु मैं तेरे मार्ग ते चलते पिया पर उस बच्चे दी तरह जिसने अज चलना सीखे तो कितना क चलेगा एक कदम दो कदम गिरेगा
ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੋਗੇ? ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਿਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਦਾਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਿਰ ਗਿਆ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਰ ਗੰਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਗੰਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਤਰ ਤੇ ਕਈ 70-80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਗਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਰਾਨੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸਾਦੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ ਅਸਤ, ਨਕੇ ਬਾ ਸਾਲ, ਤਵੰਗਰੀ ਬਾ ਦਿਲ ਅਸਤ, ਨਕੇ ਬਾ ਮਾਲ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 70 ਸਾਲ ਦਾ, 80 ਸਾਲ ਦਾ, 90 ਸਾਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਨਾਪੋ, ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਨਾਪੋ। ਅਕਲ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? ਕਈ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਪਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 5 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਕਲ ਕਰਕੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮਹਾਨ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਨਿਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਦੇਖਿਆ, 70-80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ 10-11 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਦਿਨ ਭਰ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਸੰਧਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਛੂ ਕੱਟੇਗਾ, ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਦ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਅੱਜ। ਇੱਕ ਜਥਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, 2 ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, 60 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ ਜਲ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਥਰ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਜਦ ਤੂੰ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਪਣਗੇ। ਤੇ 7 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਲ ਹੈ ਰਾਮ, ਥਲ ਹੈ ਰਾਮ। ਇਹ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦਾਈ
कोई बुजुर्ग होंदे ने, बुढ़ियां दे च बहुते ते बच्चे ही होंदे ने, गुस्ताखी उमर बच्चे ही होंदे, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, जिंदगी एवें गवाई जांदे। ताश खेडदिया होयां नूं एक सज्जन ने पूछ लिया, की कर रहे हो? समा पास पै कर दे। फिर मैनू विचकार बोलना पे, समा रहा भी है, तुसी ते आखरी दहाने ते बैठे हो, समा रहा भी है, समय नू सफल करो जिहड़ा थोड़ा बहुत रह गया। अजू समझ कुछ बिगड़े हो ना ही, बजले नाम मोरा, अजे भी कुछ नहीं बिगड़िया, तो संभाल कर ले। पर नहीं, अकल नहीं इतने। शेख सादी कहंदे ने, बुजुर्गी बा अकल अस्त, नखे बा साल, तवंगरी बा दिल अस्त, नखे बा माल। अमीरी माल असबाब तो ना ना पोए दे कोले इतने मकान ने, इतनिया महल माड़ियां ने, इतना कारोबार है, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी धन संपदा है। शेख सादी कहंदे ने, ए अमीरी दी निशानी नहीं, दिल कितना वड्डा है। इस तों पता चलेगा शूम है कि अमीर है, गरीब है कि अमीर है। दिल तो नापो। मुहम्मद साहब दे निकटवर्ती हजरत उमर, ए बसरा तो बगदाद जा रहे सन, उठते रस्ते दोपहर होई, नखलिस्तान उसनू कहने जिते चार पांच दरख्त होवन, थोड़ा जिहा पानी होवे सरोवर, उन्हों नखलिस्तान कहंदे ने। अरब देशां विच आखिर उसकी बहुत महानता होंदी है। उत्थे रुके आराम करन, उठ नू दरख्त नाल बने है, पानी नाल मूंह धोता है। एक नान कोल सी रोटी, खोल के जैसे खान लगे एक भिखारी आ गया। भिखारी नहीं सी, पर चूंके मंगदा पिया सी, इस वास्ते मंगता। उन्हें आखिया, हजरत मैं तीन दिन का भुखा। कूत शहर दे च मैं जाना है, अजे बहुत दूर है, मैं भुखा पहुंच भी सकांगा कि नहीं, पैदल हां, तुहाडे कोल उठ है, बेहतर होवेगा इस नान दा चौथा भाग मैनू दे दो, चौथा हिस्सा, मेरी थोड़ी भुख मिट जाएगी, मैं चल पवांगा। हजरत उमर ने सारा नान ही दे दिता, ले। पर वो भी समझदार बंदा सी, कहन लगा, नहीं तुसी भुखे जाओ, मेरा हिरदा ए भी कबूल करन नू तैयार है, मैनू इसका चौथा भाग दे दो। पता है हजरत उमर ने की आख्या? तू तीन दिन का भुखा, मैं अधे दिन का भुखा, मेरे ते नान खाना हराम है, ऐ ले तू। उस मनुख ने आख्या, पहली दफा एक अमीर मनुख देखे है, अमीर मनुख। दोपहर का वकत सी, महात्मा बुद्ध एक पिंड तो दूसरे पिंड जा रहे ने, नाल चेला है आनंद, जो रिश्ते दे

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट मत लीजिए।